0: बाबू। बाबू
1: है माँ।
0: जा एक बार घूमिए पड़ के जा।
1: ना माँ, तुम ही घूमो, तार पहले ही घूमते जाओ।
0: আমার খুব আসবে না রে
1: মা, খুব যন্ত্রণা না?

0: And games to begin in Japan this afternoon. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मुक्त व्यापार समझौतों से देश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संस्थानों में चयनित 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहा, प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत के आधे से भी कम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 14 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया। सरकार दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण में अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देगी। संयुक्त राष्ट्र ने अफगान शरणार्थियों को जबरन उनके देश वापस भेजने पर पाकिस्तान को चेतावनी दी। और 20वें एशियाई खेलों का आज जापान के आईची नागोया में औपचारिक उद्घाटन होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है।
2: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं, जिससे देश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं।
2: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। उन्होंने कहा कि मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में करीब आधे टीयर टू और टीयर थ्री शहरों में है। श्री मोदी ने कहा कि गांव, कस्बों और छोटे शहरों के युवा देश की नई अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के माध्यम से रोजगार सृजन और भर्ती के आकलन से पता चला है कि सरकारी नियुक्तियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ी है। 20वां रोजगार मेला देश के 45 स्थानों पर आयोजित किया गया। नवनियुक्त युवा वित्त, रेल, गृह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रक्षा सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी और केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने आज केरलम के एर्नाकुलम में दो स्थानों पर आयोजित रोजगार मेलों का उद्घाटन किया। ये मेले 20वें राष्ट्रव्यापी रोजगार मेले के अंतर्गत आयोजित किए गए। श्री चौधरी ने कहा कि लोगों के सामूहिक प्रयासों से वर्ष 2047 से पहले ही विकसित भारत का सपना साकार किया जा सकता है। श्री सुरेश गोपी ने कहा कि रोजगार मेले राष्ट्र निर्माण के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन में भारत का हिस्सा वैश्विक औसत के आधे से भी कम है। आज नई दिल्ली में पर्यावरण और

0: जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: कार्बन एमिशन की जिम्मेदारी गलत तरीके से विकासशील देशों पर डाली जाती रही है, जबकि ऐतिहासिक सच्चाई ये है आज भी प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन में भारत का योगदान ग्लोबल एवरेज के आधे से भी कम है। विकसित देशों में भारत की तुलना में 6 गुना ज्यादा प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने पर्यावरण से संबंधित हर क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है।
1: भारत G20 में इकलौता ऐसा देश है जिसने पेरिस में COP21 समिट में जो भी कमिटमेंट्स किए थे उन सारे कमिटमेंट्स को समय से पहले पूरा करके दिखाया है। नॉन फॉसिल फ्यूल, सोलर एनर्जी कैपेसिटी, कार्बन एमिशन पर रोकथाम, हर पैरामीटर पर भारत की परफॉर्मेंस दुनिया में आज सकारात्मक रूप से चर्चा का विषय है।
0: श्री मोदी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत अन्य देशों के साथ मिलकर लगातार काम कर रहा है।
1: हम दुनिया को साथ लेकर पर्यावरण सुरक्षा के नए मापदंड स्थापित कर रहे हैं। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की सोच हो या इंटरनेशनल सोलर अलायंस CDRI, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मिशन लाइफ, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ऐसा हर एक मंच क्लाइमेट और एनवायरमेंट पर भारत के डेडिकेटेड कमिटमेंट्स का प्लेटफॉर्म बन रहा है।
0: इस अवसर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करने तथा प्राणियों के प्रति करुणा रखने के प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के महत्व का उल्लेख किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में अब गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों का योगदान 54% से अधिक है, जो पूर्व निर्धारित लक्ष्य से कहीं अधिक है। श्री यादव ने वनों, घास के मैदानों और आर्द्र भूमि के संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए भारत द्वारा किए जा रहे प्रयासों का भी उल्लेख किया।
2: भारत ने मैंग्रोव यानी समुद्र तटों पर उगने वाले पेड़ों और वनस्पतियों के संरक्षण के साथ साथ तटीय समुदायों की आजीविका मजबूत करने के लिए मिष्टी कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत मैंग्रोव क्षेत्रों को फिर से विकसित करने, नए पौधे लगाने और स्थानीय लोगों की भागीदारी से पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ रोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
3: लाइवलीहुड एंड इकोलॉजिकल रेजिलियंस।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी X@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 14 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश और अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। विधि और न्याय मंत्रालय ने बताया कि ये नियुक्तियां भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद की गई हैं। निवेदिता अनिल शर्मा और निशा सहाय सक्सेना को दिल्ली उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 5 न्यायाधीशों को दिल्ली उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, जबकि एक एक न्यायाधीश को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के लिए नियुक्त किया गया है। मनोज प्रसाद, अखिल कुमार और राम शर्मा को झारखंड उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 3 न्यायाधीशों को कर्नाटक उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि वर्तमान में विश्व के सेमीकंडक्टर डिजाइन कार्यबल का लगभग 20% हिस्सा भारत में है। श्री कृष्णन ने कहा कि सरकार ने डिजाइन प्रतिभा पर विशेष बल दिया है और लगभग 85,000 डिजाइन इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम जारी है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया 2026 के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार कौशल विकास के सभी पहलुओं को प्राथमिकता देगी, जिसमें सेमीकंडक्टर विनिर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं,

0: फॉरेंसिक सामग्री, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य जरूरी चीजें शामिल हैं। नेपाल को बाढ़ त्रासदी से उबरने में सहायता के लिए राहत सामग्री ले जाने वाला ये वायुसेना का 9वां विमान था। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल को सहायता करना जारी रखेगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के दूसरे चरण में ग्रामीण विकास मंत्रालय अगले महीने से अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 34,000 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना शुरू करेगा। पहले चरण में बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु सहित 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशिक्षण बैच शुरू करने की तैयारियों की समीक्षा की गई। मंत्रालय ने बताया कि अगले वर्ष 31 दिसंबर तक 3,57,000 से अधिक ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ सार्वजनिक सेवा को समर्पित 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने और देश सेवा का अवसर देने के लिए सरकार ने कई पहल की हैं। इन्हीं में से एक है अग्निपथ योजना। इस विशेष श्रृंखला में आज हम अग्निपथ योजना के अंतर्गत युवाओं को मिल रहे नए अवसरों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
1: युवाओं को देश की सेवा का अवसर देने के लिए सरकार ने वर्ष 2022 में अग्निपथ योजना शुरू की। इसके तहत सशस्त्र सेनाओं में शामिल होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाता है। अग्निवीर 4 वर्ष तक सेवा करते हैं और इस दौरान उन्हें सैन्य प्रशिक्षण, अनुशासन और विभिन्न कौशल का अनुभव मिलता है। उत्तराखंड की सैन्य परंपरा में युवाओं की सेना में सेवा की विशेष भूमिका रही है। अग्निपथ योजना के तहत राज्य के युवा भी भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। इस वर्ष फरवरी और मार्च में चंपावत के बनबसा में आयोजित अग्निवीर भर्ती रैली में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। 4 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद प्रत्येक बैच के अधिकतम 25% अग्निवीरों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत सशस्त्र सेनाओं के नियमित कैडर में शामिल किए जाने का प्रावधान है। अन्य अग्निवीरों को सेवानिधि पैकेज और कौशल प्रमाण पत्र दिया जाता है। उत्तराखंड में सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए वर्ष 2025 में समूह गा की विभिन्न वर्दीधारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसमें पुलिस, अग्निशमन, कारागार, वन आबकारी और सचिवालय रक्षक जैसे पद शामिल हैं। निर्धारित शर्तों के अनुसार उन्हें आयु सीमा और शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी छूट का प्रावधान है। संतोष थपलियाल, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक और विज्ञान सचिव श्री एम गणेश पिल्लई ने अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों पर आकाशवाणी से विशेष बातचीत की है।
2: इंडिया स्पेस प्रोग्राम,
3: भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने संचार, नौवहन, मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन और कृषि सहित राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसरो, गगनयान, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, चंद्र अभियान और अन्य अत्याधुनिक तकनीकों पर काम कर रहा है।
2: प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन एंड लूनर लैंडिंग।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने अफगान शरणार्थियों को जबरन उनके देश वापस भेजने पर पाकिस्तान को चेतावनी दी है और अधिकारियों से कहा है कि शरणार्थियों को निर्वासित करने से पहले ये आकलन किया जाना चाहिए कि क्या अफगानिस्तान में ऐसे लोगों को उत्पीड़न, यातना या अन्य गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों का खतरा है। विशेषज्ञों ने पाकिस्तान के चिकित्सा और दंत चिकित्सा संस्थानों को अफगान छात्रों को वापस भेजने के निर्देश पर भी चिंता व्यक्त की। रिपोर्ट के अनुसार 100 अफगान छात्र, जिनमें से 20 से 40 महिलाएं शामिल हैं, इससे प्रभावित हैं। असम के प्रसिद्ध गायक, संगीतकार और सांस्कृतिक हस्ती जुबिन गर्ग की आज पुण्यतिथि है। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए राज्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 17 सितंबर से 3 दिन का जुबिन दिवस भी मनाया जा रहा है। जापान के आईची नागोया में 20वें एशियाई खेलों का उद्घाटन आज भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे से पालोमा मिजोहो स्टेडियम में होगा। एशियाई खेल आज से 4 अक्टूबर तक चलेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मुक्त व्यापार समझौतों से देश के युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी संस्थानों में चयनित 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया और 20वें एशियाई खेलों का आज जापान के आइची नागोया में

छो छो छो छो क्या शर्म की बात, भद्दर घर का लड़की भाग ड्राइवर का साथ। अरे छो छो छो क्या शर्म की बात, भद्दर घर का लड़की।

जहाँ छोकरा छुकरी लड़का लड़की बहन से बांधे दाना, कौन भागेगा किसी का साथ, कुछ ना जाए जाना, हाय राम कुछ ना जाए जाना, प्रेम से जाना कुछ ना सीखना, समझ धर्म और जा, भद्दर घर का लड़की भागे दिराई भार का साथ, अरे छो छो छो क्या

0: শুনছেন মৈত্রী ক্রীড়াঙ্গন, চলে আসি এখন স্টুডিওর বাইরে থেকে আনা একটি অনুষ্ঠানের কথায়।
1: আজ শুনবেন কলকাতায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ডার্টস প্রতিযোগিতার উপর ভিত্তি করে একটি বেতার প্রতিবেদন। এই প্রতিযোগিতায় জাপান, নেদারল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার প্রতিযোগীরাও অংশ নেয়। পুরুষ বিভাগে বাজিমাত করেছেন জাপানি খেলোয়াড় বিন তোময়ো। মহিলা বিভাগে বিজয়ী হয়েছেন ভারতীয় খেলোয়াড় মহিমা গৌতম। রানার্স হয়েছেন টিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়। যুব বিভাগে বিজয়ী হয়েছে যুবরাজ, প্রথমবার প্রতিযোগিতায় এসে বাজিমাত করল। প্যারা বিভাগেও ভালো ফল করেছেন ভারতীয় খেলোয়াড়রা। এই প্রতিযোগিতার আসরে হাজির ছিলেন আমাদের প্রতিনিধি রতন কুড়ি। তিনি কথা বলেছেন খেলোয়াড় ও অন্যান্যদের সঙ্গে। প্রথমে শুনুন যুব বিভাগে বিজয়ী যুবরাজ কি বলছেন।
2: কলকাতা খেলে সোহিত গৌতম কে সামনে মে ফাইনাল মে 3-1 সে জিতা হুম বহুত আচ্ছা লাগা জিত কে পহলি বার মানে খেলা হ্যাঁ কোই চ্যাম্পিয়নশিপ ওর মে পহলি বারি মে হি জিত গিয়া হুম পাপা বিরল দুজরেজা মেরে পাপা ভি মুঝে বহুত সাপোর্ট করতে হ্যায় ওর মেরি ফ্যামিলি ভি মুঝে বহুত সাপোর্ট করতে হ্যায় ডার্ট কে রিলেটেড ইসলিয়ে মে ইতনা আচ্ছা খেল পা রহা হুম ওর মেরে কোচ হ্যায় ভিকি স্যার বস বহুত আচ্ছা লাগা মুঝে ইয়ে ওর মে রিপ্রেজেন্ট করনা চাহতা হুম ইন্ডিয়া কি তরফ সে ওয়ার্ল্ড লেভেল পে और सेलिन ऋषिक जो मेरे कोच हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया हेड कोच है वो मेरे जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ने में।
3: मेरा नाम विकी पटेल है और मैं युवराज दुदरेजिया का बैक सपोर्ट में सपोर्ट कर रहा हूँ। उनके कोच है शैलेंद्र दीक्षित जो आ नहीं पाए यहाँ पे कोई रीजन से, तो मैं बैक सपोर्ट कर रहा हूँ और वो बहुत अच्छा खेला और आगे भी वो इंडिया को वर्ल्ड लेवल पे रिप्रेजेंट करना है तो इसलिए वो आगे और मेहनत करेगा और बढ़िया खेलेगा। डार्ट्स क्लब में हर रोज प्रैक्टिस करते हैं और डार्ट्स क्लब के मेंबर भी हम और शैलेंद्र सर जो है उनके कोच, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। एवरी मैच खत्म होने के बाद जो भी हो रहा है कि भाई आपने क्या गलती किया क्या नहीं किया वो सब उनका बहुत सपोर्ट रहा है। उनके फादर है विरल दुदरेजिया, अभी जो टाइटल मारा है जो यूथ अंडर 18 में नेशनल चैंपियनशिप अभी वो विन किया तो उसको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आगे भी वर्ल्ड लेवल पे हम उसको देखना चाहेंगे कि भाई इंडिया का नाम वो आगे जाके रोशन कर। जो टाइटल दिया है बहुत बड़ी बात है, 3 महीने से खेल रहा है डार्ट्स क्लब में और उसने आके यहाँ पे फर्स्ट टाइम उसका फर्स्ट ही नेशनल था कोलकाता में टाइटल मारा है तो हमारे लिए बहुत
4: एक नई शुरुआत है डार्ट्स का। इंडिया में एक नया दौर चालू होने वाला है उसका एक संकेत है। बहुत ही अच्छे स्तर पे एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता यहाँ पे रखी गई है। बहुत खुश नसीब है और बहुत अपने आप में गर्व महसूस करते हैं कि भारत एक मौका मिला है। आशा यही करेंगे कि आगे आने वाली जो भी प्रतियोगिताएं होंगी उसमें जरूर से भाग लेंगे और भारत का नाम रोशन होता है। जय हिंद जय भारत।
5: सर मेरा नाम शोभित सक्सेना है और मैं एक पैरा डार्ट्स प्लेयर हूँ यहाँ कोलकाता में।

0: रिजल्ट ये रहा कि मैं गोल्ड मेडल रहा और दीपक जी जो है वो सिल्वर मेडलिस्ट। हाँ जी, 3-0 से मैंने कॉम्पिटिशन को जीता है। डांस सेंटर्स एक्चुअली मैं शूटिंग करता ही, उसमें एक शूटिंग का ही गेम है, कंसंट्रेशन का गेम है, जो मैंने एक साल पहले से स्टार्ट किया है। और एक इंटरनेशनल इवेंट अभी अप्रैल में मलेशिया में हुआ था, जिसमें भी मैं ब्रॉन्ज मेडल जीत के आया हूँ। अपने देश को रिप्रेजेंट किया था मैंने, और उसके बाद मुझे ये मौका मिला है कि मेरे भारत देश में ही कोलकाता सिटी में हार्ट ऑफ जॉय जिसे बोलते हैं, उसमें मुझे ये पहला फर्स्ट इंडियन इंटरनेशनल ओपन चैंपियनशिप खेलने को मिली, जिसमें मैंने मेडल हासिल किया, गोल्ड मेडल। मेरा रिएक्शन, मेरा गोल है अभी ओलंपिक्स में जाने का, ओलंपिक तक खेलने का।
1: मेरा नाम डॉक्टर दीपक कुमार त्रिपाठी है, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, और ये पैरा डॉट्स जो भारतवर्ष में पहली बार कोलकाता में ओपन हो रहा है, इसमें मैंने सेकंड पोजीशन सिल्वर मेडल लिया है। 2 महीने पहले अप्रैल में मलेशिया से भी खेल के आया हूँ, वहाँ से मैंने ब्रॉन्ज मेडल लेके आया था। और मैं पेशे से असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ नेहरू ग्राम भारती यूनिवर्सिटी में, जो प्रयागराज में स्थित है, और मैं इसी डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट में हूँ जहाँ पर हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे पढ़ते हैं, और हियरिंग इम्पेयर्ड टीचर्स को मैं तैयार करता हूँ जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को पढ़ा सकें, चाहे वो डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इम्पेयर्ड, चाहे वो बीएड इन स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इम्पेयर्ड हो, चाहे वो एमएड स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इम्पेयरमेंट हो, या चाहे वो पीएचडी इन स्पेशल एजुकेशन हियरिंग इम्पेयरमेंट हो। मेरे अंडर में 4 बच्चे पीएचडी कर चुके हैं, अभी रिसेंटली 1 सप्ताह के अंदर मेरे अंडर में 1 बच्चा दिव्यांग, वो भी दिव्यांग ही है, उसको मैं पीएचडी करा रहा हूँ। मैं तो बहुत दिनों से नहीं खेल रहा हूँ, मैं 1 वर्ष से खेल रहा हूँ, मात्र 1 वर्ष से खेल रहा हूँ, और 1 वर्ष में ही मैंने नेशनल खेला। नेशनल में मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा, और जो नोएडा में उदेश पे हुआ था, उसके बाद मैं मलेशिया गया, वहाँ पे मैं ब्रॉन्ज मेडल लेके आया, और यहाँ पे कोलकाता में आया तो मेरा सेकंड पोजीशन आया, जिसमें मुझे सिल्वर मेडल मिला।
2: मेरा महिमा गौतम है, मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ, डिस्ट्रिक्ट है उन्नाव मेरा। मैं कोलकाता में खेलने आई थी, फर्स्ट इंटरनेशनल डार्ट्स था, और मैं फाइनल जीती हूँ। मेरा फाइनल हुआ है अभी, ओनेंट मेरी थी टिया बनर्जी, एंड मैं मतलब विन कर गई हूँ, और हाँ मैं 0 से विन करी हूँ, और मतलब कि गेम लेवल हाँ ठीक था, मतलब कि ओके था, बट लेकिन 0 से जीती हूँ तो अच्छा है, 5-0 से जीती हूँ मैं। फ्यूचर मेरा बस यही एम है कि मैं WDF में अपना वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहती हूँ।
3: हेलो, हमार नाम हलो जिया बैनर्जी, हमें यही रनर्स अप हुई विमेन सिंगल्स कैटेगरी इन द इंडियन नेशनल डार्ट्स फेडरेशन इन कोलकाता। आई लॉस्ट टू महिमा गौतम, शी इज अ यूपी स्टेट चैम्पियन, आई लॉस्ट टू हर इन द फाइनल्स, और फाइनल्स खूब भलो खेल, और हमें रनर्स अप हल।

0: অসাফল্য এবং নিঃস্বর কান্নার ধ্বনি। জামা প্যান্ট পরে স্বপ্ন দেখছে অসহ্য দুপুরে, অন্ধকার গাঢ় হলে তারা ঘরে ফেরে, গান গায়। ঘুমিয়ে যাওয়ার আগে জানালা খুলে দেখে আকাশের কালো জলাশয়ে খিলখিল করে হাসছে কুৎসিত জ্যোৎস্না ও রক্তপিপাসু চাঁদ, আর জ্যোতির্মণ্ডল তোলপাড় করে মাটির দিকে ছুটে আসছে উদ্ভ্রান্ত টোটো। চালকের আসনে স্বর্গ থেকে উৎখাত হওয়া হতভাগ্য ঈশ্বর। টোকা, দরজায় টোকা পড়েনি, তবু তুমি বললে এসেছে বোধ হয়। এই সাত সকালে সদর দরজায় ছিটিয়ে দিয়েছ জল, এক ফোঁটাও ধুলো রাখনি মাটির উঠোনে। অনেকদিন পরে জলচৌকির ওপরে বসিয়েছ পাথরের ফুলদানি, মাঝে মাঝে দৌড়ে যাচ্ছ বারান্দার দিকে, আঁচলে হাত মুছতে মুছতে উঁকি মারছ রাস্তায়। কত মানুষ পেরিয়ে যাচ্ছে, সাইকেল চালিয়ে দুধওয়ালা দিয়ে গেল দুধ, গাছে গাছে পাখি ডাকছে, ভোরের কুয়াশা ছাড়িয়ে গোল হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে সূর্যের আলো, চেনা পাঠিকা পাঠ করছে সকালের সংবাদ। সহস্র গাড়ির শব্দ হালকা ও ভারী হয়ে চৌকাঠ পেরিয়ে ঢুকে পড়ছে ঘরের ভিতরে, অথচ দরজায় টোকা পড়ল কোথায়? দিন পেরিয়ে গাঢ় হচ্ছে নিথর অন্ধকার, কোথায় সেই নীলকণ্ঠের ডাক, মা? এবার ছোটদের কয়েকটা কবিতা শোনাই। প্রথম কবিতার নাম ইচ্ছে। ইচ্ছে হলেই গাইতে পারি, সাত সকালে নাইতে পারি, খেলার মাঠে ছুটতে পারি জোরে। ইচ্ছে হলেই নীল আকাশে উর্মি মুখর সূর্য ভাসে, কাঠের লাঠি মাটির দাওয়ায় ঘোরে। ইচ্ছে হলেই তাক দুমাদুম ঢোলের বলে ভাঙছি রে ঘুম, কে আর কাকে মাছ দরিয়ায় থামায়। ইচ্ছে হলেই ডিগবাজি খাই, তিনখানি বোন চারখানি ভাই, ধুলো মাখাই স্কুলের নতুন জামায়। ইচ্ছে হলেই অঙ্ক করি, কিংবা হঠাৎ মুঠোয় ধরি লাফিয়ে ওঠা গঙ্গা ফড়িং ঘাসের। ইচ্ছে হলেই মেঘের মাসি টাঙিয়ে দেবেন চাঁদের হাসি, বৃষ্টি দেবেন সত্যি শ্রাবণ মাসের। ইচ্ছে হলেই রেলের গাড়ি, নকাকা বা জ্যাঠার বাড়ি, হাওড়া থেকে রূপনারায়ণপুরে। ইচ্ছে হলেই আর কি জানি, গঙ্গাতে নেই শুদ্ধ পানি, ডাকছে ডাহুক মস্ত দুপুর জুড়ে। গড়িয়ে যাওয়া ইচ্ছে সকল, সামলানো কি অল্প ধকল, বাক্স বোঝাই ইচ্ছে কাটে পোকায়। আধার মুছে প্রভাত হলে ইচ্ছে নতুন দুয়ার খোলে, কৃষ্ণচূড়াও দুলছে থোকায় থোকায়। ঘুম, কেউ ঘুমালাম গভীর রাতে, কেউ ঘুমালাম ভোরে, কেউ ঘুমালাম ভর দুপুরে কপট ঘুমের ঘোরে, কেউ ঘুমালাম বের করে দাঁত বীরের মতন ছড়িয়ে দুহাত, কেউ ঘুমালাম মেঘের ভেতর ঘণ্টাখানেক ধরে, কেউ ঘুমালাম পথের ওপর কেউ বা খোলা মাঠে, কেউ ঘুমালাম বাদশাজাদার সোনার সেগুন কাঠে। হাজার পাখির ঝাঁক ছাড়িয়ে কেউ ঘুমালাম নাক বাড়িয়ে, জ্যোৎস্নালোকে কেউ ঘুমালাম কংসাবতীর ঘাটে, কেউ ঘুমালাম হাতির পিঠে বিছিয়ে শীতল পাটি, কেউ ঘুমালাম খড়ের গাদায় জড়িয়ে বেতের লাঠি, কেউ ঘুমালাম শিল্পকলায় ছায়ায় ঢাকা ছাতিম তলায়, কেউ ঘুমিয়ে হঠাৎ খেলাম মামদভূতের চাটি। শেষ কবিতা, পরামর্শ। আমরা তো এদিক ওদিক বেড়াতে যাই, সে বেড়ানোর আগে অনেক রকম পরামর্শ করি, এটা এমনই একটা পরামর্শ। বিশ পা যাবেন নাক বরাবর, দশ পা যাবেন বাঁয়ে, ডাইনে পাবেন চায়ের দোকান মন ভরে যায় চায়ে, দাঁড়িয়ে আছে বৃদ্ধ শিমুল ডালগুলি যার বাঁকা, ডালের ওপর লেচকাটা কাক নাম ধরে নিন কাকা, বলবে ও ভাই কখন এলেন কদিন হবে থাকা, শীত যায় যায় শিমুলতলায় থামলে গাড়ির চাকা। শিমুলতলায় ঘাসপাতা ফুল পাহাড় তলির বাড়ি, শিমুলতলায় তাল ঠুকে যায় রুগ্ন ঘোড়ার গাড়ি, মেঘ ছুঁয়ে দেয় সবুজ পাহাড় মেঘ ছুঁয়ে যায় পাখি, এসব দেখেই মন বলে দেয় 10-12 দিন থাকি। ভরলে নামুন একলা, তবে সঙ্গে নেবেন নাতি, যে নাতি নীল বংশে দেবে সন্ধেবেলায় বাতি। হাত পা নেড়েই বলবে নাতি ছড়িয়ে খুশির আলো, কলকাতা নয় দাদুর সঙ্গে শিমুলতলাই ভালো।
1: শুনলেন কবি পার্থপ্রতিম আচার্যের স্বরচিত কবিতা পাঠ। শ্রবণী আজ এই পর্যন্তই। শব্দগ্রহণ ও সম্পাদনা সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়, প্রযোজনা দেবর্ষি ঘোষ।
2: শ্রবণী অনুষ্ঠানটি এখানে শেষ হল। এখন শুনবেন হিন্দি সংবাদ।
3: আকাশবাণী সে সমাচার সন্ধ্যা কে সাথ মে সর ফিরোজি। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपे। रेलवे ने लखनऊ डिवीजन के 607 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दी। पश्चिमी रेलवे के उधना उकाई सोंगाद खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवरब्रिज के निर्माण को भी मंजूरी। 2 दिवसीय पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन नागालैंड में संपन्न। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया गया। नेपाल के वित्त मंत्री डॉ स्वर्णिम वागले ने भारत नेपाल साझेदारी के नवीनीकरण का आह्वान किया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह तटीय आंध्र प्रदेश कर्नाटक केरलम महाराष्ट्र तमिलनाडु और तेलंगाना में कल तेज बारिश की संभावना। और 20वें एशियाई खेलों का जापान में आधिकारिक रूप से शुभारंभ। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्य भारतीय दल की अगुवाई की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है।
4: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है, और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
4: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है।
4: भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, और भारत की स्टार्टअप स्टोरी अब केवल बड़े शहरों की कहानी नहीं है। आज करीब आधे रिकॉग्नाइज स्टार्टअप Tier 2 और Tier 3 शहरों में है। यानी आज गांव, कस्बे और छोटे शहर का युवा भी भारत की नई इकोनॉमी में अपनी भूमिका बड़ी बना रहा है।
3: इस अवसर पर देश में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। कोलकाता में शिक्षा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉ. सुकांत मजूमदार ने नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने विशाखापट्टनम में आयोजित 20वें रोजगार मेले में 200 नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। मुंबई में युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे ने नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। रेलवे ने उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने बताया कि स्वीकृत परियोजना खंड के चिन्हित शेष हिस्सों में कवच 4.0 का विस्तार करेगी। एक रिपोर्ट।
5: इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके साथ ही पश्चिम रेलवे के उधना उकाई सोनगढ़ खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 133 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। रेल मंत्रालय ने बताया कि पुल के हिस्से में 91 करोड़ से अधिक रुपए की अनुमानित लागत वाले ओपन वेब गर्डर सम्मिलित होगा। 4 लेन रोड ओवर ब्रिज सड़क यातायात की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करेगा। दक्षिण तट रेलवे के 73 किलोमीटर लंबे सावल्यापुरम गुंटूर खंड पर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के उन्नयन के लिए 142 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना को मंजूरी दी गई है। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस खंड को 25 किलोवाट की एक यूनिट से 25 किलोवाट की दो यूनिट के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। वहीं सोलापुर डिवीजन के 7 स्टेशनों पर 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत मध्य रेलवे के मोहोल, मुंधेवाड़ी, बाले, सोलापुर, होटगी जंक्शन, होटगी एक कैबिन, शाहबाद और वाड़ी जंक्शन पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली पूरे डिवीजन में रेलवे सिग्नलिंग बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी और स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन को सुगम बनाएगी। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए X@AIRNewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नागालैंड के चुमाओ के दीमा में नागा यूनाइटेड विलेज में 2 दिन का पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन आज संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में पूर्वोत्तर क्षेत्रों के नीति निर्माता, शिक्षाविद और प्रशासक शामिल हुए। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने पर चर्चा की।
7: यह सम्मेलन नागालैंड सरकार ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर आयोजित किया था। इसका विषय था NEP 2020 को लागू करना, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए परिकल्पना, चुनौतियां और अवसर। समापन समारोह में आज त्रिपुरा के उच्च शिक्षा, पंचायत और सामान्य प्रशासन मंत्री किशोर बर्मन ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत में शिक्षा को अधिक कौशल उन्मुख और भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। सम्मेलन में ये भी प्रस्ताव रखा गया कि पूर्वोत्तर राज्यों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद के लिए प्रधानमंत्री के विशेष वित्तीय पैकेज पर विचार किया जा सकता है। कोहिमा से असुनियों की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। आज की इस कड़ी में आपको जानकारी दे रहे हैं कि कैसे प्रगति प्लेटफॉर्म के जरिए इस विजन को हकीकत में बदला गया है।
8: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में प्रगति प्लेटफॉर्म की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य विकास परियोजनाओं, सरकारी योजनाओं और लोगों की शिकायतों का तेजी से समाधान करना है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए प्रधानमंत्री खुद केंद्र सरकार के मंत्रालयों और राज्यों के साथ सीधे समीक्षा करते हैं। पिछले 10 वर्षों में प्रगति ने कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में देरी की वजह से होने वाली समस्याओं को दूर करने और तेजी से फैसले लेने में मदद की है। इससे अधिकारियों में जवाबदेही की भावना भी मजबूत हुई है। इस साल फरवरी में राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि प्रधानमंत्री स्तर पर विस्तृत निगरानी के कारण 85 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने और उनमें तेजी लाने में मदद मिली है।
4: हमने एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाया, हर महीने बैठा और लगातार उस काम करते करते और संबंधित राज्यों को भी बिठाया, हर एक की बारीकी से देखा और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि इस प्रगति के इम्प्लीमेंटेशन को बारीकी से प्रधानमंत्री के स्तर पर देखे जाने के कारण 85 लाख करोड़ रुपीज का काम को गति मिली। देश की कितनी बड़ी शक्ति को अनलॉक किया।

0: ने इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है ये हमने करके दिखाया।
1: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बीवी नगर हैदराबाद की कार्यकारी निदेशक डॉक्टर अमिता अग्रवाल ने बताया कि प्रगति तंत्र की मदद से एम्स से जुड़े पानी और बिजली की आपूर्ति जैसी महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करने में मदद मिली।
2: कि हमारे पास दो मेजर इश्यूज थे, एक पावर सप्लाई का और एक वाटर सप्लाई, जो कि दोनों बहुत अहम होते हैं अस्पताल के लिए। और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की इंटरवेंशन, सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटरवेंशन और साथ में स्टेट गवर्नमेंट का हेल्प से ये प्रॉब्लम्स दोनों धीरे धीरे करके सॉल्व हो गए।
1: प्रगति प्लेटफॉर्म सहकारी संघवाद का भी एक उदाहरण है। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और केंद्र के विभिन्न मंत्रालय एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिलकर काम करते हैं। अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रगति की 53 बैठकों की अध्यक्षता कर चुके हैं। आनंद कुमार के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। आज नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक सेमिनार में डॉक्टर वागले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों द्वारा मिलकर हासिल की जा सकने वाली बड़ी संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने नेपाल में हाल ही में बाढ़ के बाद भारत से त्वरित राहत और बचाव सहायता की भी सराहना की।
4: I think close to 8 cargo planes have arrived.
5: अब तक लगभग 8 कार्गो विमान 130 टन राहत सामग्री लेकर आ चुके हैं। 50 से अधिक भारतीय कर्मी आज भी बचाव और राहत कार्यों में मदद कर रहे हैं, खासकर उन लोगों की जान बचाने और उन्हें निकालने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो शायद अभी भी इन पन बिजली सुरंगों में फंसे हो सकते हैं। मुझे लगता है कि भारत सरकार मदद के मुद्दे को बहुत सकारात्मक रूप से देख रही है।
4: The Indian government is looking at the issue of assistance very positively.
3: इस बीच भारत ने नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाएं, फॉरेंसिक का सामान, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल को बाढ़ आपदा में सहायता के लिए राहत सामग्री ले गया ये वायुसेना का 9वां विमान था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। नेपाल सरकार ने पिछले महीने विनाशकारी बाढ़ के कारणों की जांच के लिए 7 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 3 पद जीत लिए हैं। परिषद के यश डबास अध्यक्ष, रिया छावड़ी सचिव और लक्ष्य राज सिंह संयुक्त सचिव चुने गए। निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन ने उपाध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने छात्र संघ चुनावों में परिषद की जीत पर बधाई दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू को आज पंजाब पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वे लुधियाना में पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के पास उस समय विरोध प्रदर्शन कर रहे थे जब मुख्यमंत्री भगवंत मान का काफिला वहां से गुजर रहा था। श्री बिट्टू ने बताया कि भाजपा पंजाब से जुड़े मुद्दे उठाती रहेगी और जब भी जरूरत होगी मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों और कार्यालयों के बाहर शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन करेगी। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और तेलंगाना में कल तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मराठवाड़ा, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, कोंकण, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कल गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन समारोह आज जापान के आईची नागोया में हुआ। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्य भारतीय दल की अगुवाई की। टेक बॉल स्पर्धा के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज भारत की क्विंसी डिसूजा को इंडोनेशिया की सुमाया से 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। क्विंसी कल कांस्य पदक मुकाबला खेलेंगी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम भी कल सेमीफाइनल खेलेगी। सेमीफाइनल में भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। एक अन्य सेमीफाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के भारतीय दल को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि भारतीय खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और खेलों में शानदार सफलता हासिल करेंगे। राधा अष्टमी के शुभ अवसर पर आज मंदिरों में श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव के साथ राधा अष्टमी मनाई। उत्तर प्रदेश के बरसाना मथुरा

0: वृंदावन और ब्रज क्षेत्र के अन्य हिस्सों में श्री राधा रानी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपे। रेलवे ने लखनऊ डिवीजन के 607 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दी। 2 दिवसीय पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन नागालैंड में सम्पन्न। नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने भारत नेपाल साझेदारी के नवीनीकरण का आह्वान किया। और 20वें एशियाई खेलों का जापान में आधिकारिक रूप से शुभारंभ। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी मैत्री अनुष्ठान प्रचारित होच्छे मीडियम वेवे 505 मीटरे अर्थात 594 किलोहर्ट्ज़ে। এখন শুনবেন কথায় গানে উপস্থাপনায় সৃজিতা রায়।

0: तुरुप तुरुप ताना तुरुप तुरुप
1: खापू रे पाक मेरे पाक जतो रस उछले पड़े चटानेर मीठा मधुर नलेनेर नबद भरे खापुरे पाक मेरे पाक जतो रस उछले पड़े चटानेर मीठा मधुर नलेनेर नबद भरे अनशन भाविस केने ओ बोल